0: और पत्तल तीनों ने
1: हाँ
0: अब सौंद में गीत में गायन करने राजू दिंग पद्मालावर रिस्मीना समिंग संगीत सपैने अजित प्रेमलाल।